0: ठीक है ठीक है। अरे फिर इच्छा फिर Blue hanging wires, full to building, dropping. Voltage wires.
1: Okay.